0: और पासपोर्ट पेश करके गाड़ी किराए पे ले जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ड्राइविंग लाइसेंस उस मुल्क का होना चाहिए जो ड्राइविंग लाइसेंसों के बैन अल्कवामी माहदे में शामिल हो।
1: मेरी एक दोस्त हमेशा रेंटल कार की सर्विस इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी लेने के लिए एक खास एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करते हैं।
2: ज़रूर ऐसा ही होगा। वैसे सामीन, वसीमा साहिबा जैसे साइकिल नहीं चलाती वैसे ही ड्राइविंग से भी माशाल्लाह फारिग हैं।
0: लेकिन जुबान खूब चलाती हैं, बच के
2: और अब सफर पर निकलने के मौजूद पर गीत भी सुनिए। तो हमारे प्रोड्यूसर कामयामा साहब ने ये गीत मुंतखब किया है, और इस गीत को सुनवाने से पहले कहते हैं कि गर्मियों का मौसम सफ़र के लिए अच्छा और यादगार मौसम है ना। मेरा तो नक्शा खोलकर साइकिल चलाने को और शहरों या देहातों में घूमने को दिल चाहता है।
1: बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई जब कभी आप अनजाने या नए रास्तों पर सफ़र करने जाते हैं तो आपको नक्शे की मदद से रास्ता तलाश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नक्शा देखते हुए सफ़र के बारे में सोचना भी बड़ा दिलचस्प है।
0: कामयामा साहब पूछ रहे हैं सामीन आपसे कि क्या आपने कभी नक्शे के साथ ख्याली सफ़र का मनसूबा बनाया है। फिर कहते हैं जब आप किराए की गाड़ी या साइकिल लेने के लिए तैयार होते हैं तो क्या आप अपने नक्शे के साथ गर्मियों की अपनी मुहिम पर या सफ़र पर निकलते हैं।
2: तो आज हम कामयामा साहब का मुंतखब करदा नेओ स्काई नेओ मैप यानी उफ़ुक़े ताज़ा और नया नक्शा मुतारिफ़ करवा रहे हैं।
1: ये निजी गासा की हाई स्कूल आइडल क्लब ने पेश किया है। ये एनिमे सीरीज लव लाइफ निजी गासे की हाई स्कूल आइडल क्लब का ग्रुप है।
0: 2020 में रिलीज होने वाला ये गाना उसके सीजन एक या सीजन वन या सीजन अव्वल का इख्तितामी गाना है। इस एनिमे में स्कूल की लड़कियां आइडल सरगर्मियां करती हैं, रक्स और गाने को स्कूल क्लब के तौर पर पेश करती हैं, और ये ड्रामा उनके और नौजवानों के रवाबत को दिखाता है।
2: गाने के बोल कहते हैं जब आप घूमते हैं तो आपको कुछ आने वाला महसूस होता है। आसमान दिन ब दिन मौसम बमौसम बदलता रहा, परेशान ना हो लेकिन जो कुछ आपको पसंद है उसका लुत्फ उठाएं। किसी भी किस्म के मुस्तकबिल में अगर हम एक साथ मुस्कुरा रहे हों तो मुझे खुशी होगी। तो आइए सिर्फ एक अपना नक्शा लेकर जाते हैं। हम ख्वाब देखने को पसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ख्वाब देखेंगे।
1: तो हमारे सामेईन इस गाने को सुनकर खुशगवार सफर करें। नक्शा कभी कभार किसी शख्स के मुस्तकबिल की अलामत होता है।
0: इतालवी जुमले ताबुला रासा यानी खाली तख्ती या कोरा कागज का मतलब है कि आपके सामने हर तरह के इम्कानात हो सकते हैं। अपने सफेद नक्शे में अपने रंग भर सकते हैं और शानदार गर्मियों की शानदार यादें तश्कील कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस गीत को पसंद करेंगे। तो आइए सुनते हैं।

0: जी सामिन, गीत ने उसका इन ने मैप आपने सुना, कैसा लगा?
1: मुझे तो बहुत पसंद आया। और अब जापानी मुहावरों और कहावतों पर मुश्तमिल मेरा पसंदीदा सिलसिला है जापानी कहावत गरी।
2: इस सिलसिले में हम जापान के जबान जदयाम मुहावरे पेश करते हैं।
0: आज का मुहावरा है कहो ओ नित्ते माते, माफ कीजिएगा, कहो व नित्ते माते।
2: इसका लफ्जी मतलब है नतीजा आने या इनाम मिलने के इंतजार करने के दौरान नींद।
1: चूँकि किस्मत इंसान के बस से बाहर होती है, इसलिए बेहतर है कि जल्दबाजी या जबरदस्ती ना की जाए, बल्कि सही मौके का सुकून से इंतजार किया जाए।
0: जी, ये है इस मुहावरे का इस्तलाही मानी। और इसमें लफ्ज का हो यानी इनाम या बदला बुद्ध मत का तस्वुर है, जो उस इनाम की तरफ इशारा करता है जो किसी को पिछली जिंदगी के उसके अमाल के नतीजे में मौजूदा जिंदगी में मिलता है। इसका मतलब खुशकिस्मती मिलना भी है।
2: इस जुमले का मतलब यह नहीं है कि लापरवाही या सुस्ती से काम किया जा सकता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी ताकत या वसाइल सर्फ करने के बाद इंसान को पुरसकून और मुस्तहकम जहन के साथ अच्छी खबर का सब्र से इंतजार करना चाहिए।
1: वाकई कामयाबी तो सब्र से इंतजार करने वालों को ही नसीब होती है।
0: हमारे भी कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा।
2: बिल्कुल।
0: समिन, ये कहावत रवायती इरोहा कारुता मुहावरों में से एक है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं।
0: जी सामिन, आपको याद दिलाते चलें कि अप्रैल में हमने एक सिलसिले में जापान में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए गैर मुल्की जुबानों में मुआवनत की फ्राहमी के बारे में बताना शुरू किया था। अब कुछ तातुल के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं।
2: किसी शख्स के शदीद अलील या जख्मी होने की सूरत में हंगामी नकलो हमल के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाती है। नई सीरीज में एम्बुलेंसों और हंगामी हालात में उन्हें इस्तेमाल करने के मौजूद तरीके के बारे में बताया जा रहा है।
1: इस सिलसिले की पहली किस्त में 5 अप्रैल को एम्बुलेंस सर्विस पर तवज्जो मरकूज करते हुए बताया गया था कि जापान में जब कभी एम्बुलेंस बुलाने के लिए 119 पर टेलीफोन करें तो टेलीफोन ऑपरेटर जरूरी मालूमात हासिल करता है। ऐसे मौके पर टेलीफोन पर बात करते हुए तर्जुमे के निजी मराकज के जरिए बयख वक्त तर्जुमे की सहूलत भी दस्तियाब हो सकती है।
0: इस सिलसिले की आइंदा किस्त में फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की तयकरदा गाइड फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज के मुताबिक बताएंगे कि एम्बुलेंस को कैसे बुलाया जाए।
1: जापान में एम्बुलेंस बुलाने के लिए आपको 119 डायल करना है।
2: अच्छा, चाहे जापान के किसी भी शहर में हो, यही नंबर है?
0: जी जी, बिल्कुल। एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन पे बस आपने डायल करना है 119-119। इससे आपका राबता मुकामी फायर डिपार्टमेंट के एम्बुलेंस भिजवाने वाले ऑपरेटर से हो जाएगा।
1: अच्छा, टेलीफोन पर फायर डिपार्टमेंट से राबता होगा?
0: हाँ हाँ, असल में वो भी आपको वजाहत करती हूँ। तो एम्बुलेंस भिजवाने के लिए ऑपरेटर आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछेगा, इसलिए आप एक एक करके इन तमाम सवालात के जवाब दीजिए।
2: आपको कुछ मालूम है किस किस्म के सवालात वो पूछते हैं?
0: सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि क्या ये हंगामी सूरत हाल फायर यानी आतिशजदगी की वजह से है, यानी कि फायर डिपार्टमेंट को किया ना, तो वो ये पूछेगा। तो वो फिर दूसरा पूछेगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी यानी हंगामी नौयत का तिब्बी मसला है, लिहाजा आपने जवाब देना है मेडिकल इमरजेंसी।
1: अच्छा, उसके बाद
0: आपका एड्रेस पूछा जाएगा।
2: और अगर एड्रेस याद ना हो? मुझे तो अपना पता जापान का अभी याद नहीं है।
0: जेब में रखिएगा लिख के। वैसे ऐसी सूरत में किसी नज़दीकी चौराहे या इमारत या काबिल शनाख्त मकाम के बारे में मालूमात मुहैया करें।
1: अच्छा, मुझे याद है कि एक बार मुझे बाहर किसी शख्स के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। चूंकि वो सड़क थी तो ऑपरेटर ने मुझे ये पूछा कि नज़दीकी यूटिलिटी के खम्भे पर लिखा हुआ नंबर बताएं।
0: हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका है और इससे भी लोकेशन आसानी से पता चल सकती है। फिर ऑपरेटर बीमार शख्स का नाम, उसकी उम्र और मर्ज की इलामात जाहिर होने का वक्त पूछेगा। और हाँ, ऑपरेटर आपसे आपका टेलीफोन नंबर भी पूछेगा, इसलिए ऐसा नंबर बताना है जिस पर आप फौरी तौर पर उस वक्त दस्तियाब हों।
1: اچھا یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن اگر کوئی ایسی فوری نوعیت کی ہنگامی صورتحال ہو جس میں ایمبولنس جلد از جلد پہنچنا ضروری ہو اور سوالات جواب دینے میں تاخیر ہونے کا احتمال ہو تو کیا کیا جائے؟
0: ایسی صورت میں تمام سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ایمبولنس بھجوا دی جائے گی، لیکن آپ یہ یاد رکھیں، گھبرانا نہیں ہے، ہوش و حواس قائم رکھنے ہیں، تحمل اور سکون کے ساتھ سب باتیں بتانی ہیں۔
2: چلیے سامعین، یہ تھیں جاپان میں ایمبولنس بلانے کے متعلق معلومات۔ مزید معلومات آئندہ ہفتوں میں نشر کی جائیں گی۔ آخر میں ایک بار پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ جاپان میں ایمبولنس کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 119۔
0: اور آج کل تو سامعین گرمی جاپان میں اس قدر زیادہ ہے، اور جو کہ عام ہر سال زیادہ بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے عمر رسیدہ لوگ کیا، بچے کیا، اچھا خاصا نوجوان بھی لو لگنے سے بیمار ہو جاتا ہے، اور عام طور پر یہ خدشہ کھلی دھوپ میں یا کھلے مقام میں، آپ کہیں باہر ہوتے ہیں تو وہاں یہ خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کل یوں ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے ایمبولینسز کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔
2: اکثر میں بھی جب بازار میں جاتا ہوں تو ایمبولینسوں کی آوازیں آتی ہیں، اور اکثر میرے خیال میں لوگ لو لگنے کی وجہ سے ہی سفر کرتے ہیں۔
0: جی جی بالکل
1: جی۔ اور
0: اب اجازت لینے کا وقت ہے، تو صوفیہ ہمیں کیا بتائیں گی، لیکن خلیل صاحب کو پہلے بتانے دیں۔
1: جی جی،
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو کے توسط سے ہمارے کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں،
0: جو ابھی کوئز شروع ہوا ہے، جاپانی زبان دانی۔
2: جی جی بالکل، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں یہ جواب بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام سننے اور اپنی آرا دینے کے لیے آپ ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس یاد رکھیں، nhk.jp/اردو۔
1: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے۔
0: جی سامعین، اب اپنے میزبانوں صوفیہ جمشید، خلیل شیرازی، وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔